0: ब्राह्मणेभ्य सोमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु मङ्गलं कौसलेन्द्राय मगनी गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं बृन्दारण्यनिवासाय बलरामानुजाय च रुक्मिणी प्राणनाथाय पार्थसूताय मङ्गलं पार्थसूताय मङ्गलं मङ्गलं ॐ श्रीराघवेन्द्राय नमः।
1: இதுவரை ஸ்ரீ ராகவேந்திர சரித்திரம் இசைப்பேருரை கேட்டீர்கள். நிகழ்த்தினார் கல்யாணபுரம் ஆர். வீரராகவன் அவர்கள், வி. வி. ஸ்ரீனிவாசராவ் அவர்கள் வயலின், எம். குருராஜ் அவர்கள் மிருதங்கம்.

कांग्रेस हैज कैप्ट द दतिया सीट इन मध्य प्रदेश विद द पार्टी कैंडिडेट घनश्याम सिंह डिफीटिंग हिज नियरेस्ट राइवल आशुतोष तिवारी ऑफ द बीजेपी बाय ओवर 6,000 वोट्स इन बायपोल. वोटिंग फॉर द बायपोल्स टू द थ्री कॉन्स्टिट्युएंसीज वॉज हेल्ड ऑन द 30th ऑफ लास्ट मंथ. भारतीय जनता पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन हैज सेड दैट द पार्टी एक्सेप्ट्स द मैंडेट रिसीव्ड इन टुडेज थ्री असेंबली बाय इलेक्शंस. इन अ सोशल मीडिया पोस्ट ही एक्सप्रेस्ड ग्रैटिट्यूड टू द पीपल ऑफ मांजलपुर असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी इन गुजरात फॉर एक्सप्रेसिंग देयर फेथ इन द बीजेपी. एक्सटेंडेड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द डेडिकेटेड वर्कर्स एंड ऑफिस बेयरर्स ऑफ द बीजेपी फॉर दिस विक्ट्री. कर्नाटक चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार एक्सपेंडेड हिज कैबिनेट टुडे. गवर्नर Thawarchand Gehlot administered the oath of office to 19 new ministers at a simple ceremony at Lok Bhavan in Bengaluru. D.K. Shivakumar assumed office as chief minister on June 3rd along with 13 other ministers. His cabinet size has now reached 33. The only woman legislator announced by All India Congress Committee, Gayatri Shanti Gowda, was not sworn in today, and another legislator, Mankala Vaidya,